किसी इंतजार में है, पीछे के इंतजार या आगे के इंतजार, ये बहस अभी यहां पे नहीं है। और उसके बाद पूरी दास्तान है, कुछ मतलब जो है यहां पर माह रमजान में बयान किया जा चुका है। लेकिन साथ में अल्लाह की बारगाह में एक दुआ कर रहे थे, काला, इसको जनाब मूसा ने यह दुआ फरमाई, रब्बे नजनी मिनल कौम जालिमीन, ए मेरे अल्लाह मुझे जालिम कौम से निजात दे। और जालिम कौम से निजात के मतलब भी ये नहीं था कि किसी तरह से यहां से निकल जाए फिर दोबारा वापस नहीं बढ़ने, बल्कि 10 सालों बाद हजरत मूसा 10 साल बाद पलटे, वही फिरौन मौजूद था, वही सोच मौजूद थी, वही पेशिनगोई मौजूद थी, और पलट के भी ये नहीं कहा कि जाओ वापस जाओ मिस्र में, पहले छुप छुप के लश्कर बनाना, फौज बनाना, अफराद को तैयार करना, फिर उसके बाद जब किसी ताकत के लायक हो जाओ तो फिरौन के मुकाबले में आना, ये कुछ नहीं। बल्कि कुरान ने डायरेक्ट ये हुक्म दिया कि इज़हब इला फिरौन इन्नहु तगा, ए मूसा निकलो फिरौन की तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि वो तुगयान कर रहा है, उसका तुगयान बहुत बढ़ चुका है, सीधे फिरौन के पास। इज़हब इला फिरौन, इज़हब इला मिस्र नहीं कहा, मिस्र यानी इजिप्ट, ये बच्चे जो है शायद मिस्र ना जानते हो, मिस्र यानी इजिप्ट, ये नहीं कहा कि निकलो यहां मदायन से या फिलिस्तीन की सरजमीन से और जाओ मिस्र की तरफ, नहीं, इज़हब इला फिरौन, तुम सीधे फिरौन की तरफ जाओ। इमाम हुसैन सलाम को भी राय मशवरा लोग दे रहे थे कि उस पहाड़ी के पीछे चले जाएं, उस इलाके में चले जाएं, उधर यमन की तरफ चले जाएं, वहां आपके बाबा के चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, वहां पे एक लश्कर तैयार हो जाएगा, लश्कर तैयार हो, ये लश्कर तैयार होते होते यजीद बहुत कुछ नाबूद कर चुका होगा, जो जाहिरी नमाज रोजा था वो भी खत्म हो जाता, तो उसका इमाम इंतजार नहीं कर रहे हैं, इमाम को लश्कर की फत नहीं चाहिए यहां पर, ये फर्क समझे दीदो। कभी कभी लश्कर की फत जो है वो लाजिम होती है, लेकिन और अल्लाह चाहे तो वो दिला सकता है, अल्लाह चाहे तो तालूत के, जनाबे तालूत के छोटे लश्कर को एक 13-14 साल के बच्चे के जरिए से फत दिला दी, 13-14, उसका हजरत दाऊद की उम्र इतनी थी, बच्चे थे, उन्हें ले भी नहीं गए थे जंग में, कहा तुम तो बच्चे हो, दूसरे भाई लोग जंग करने गए थे, लेकिन नहीं नहीं तुम कहां जंग करने जाओगे, वो खाने वाने के बहाने किसी तरह पहुंच गए, जिनकी तड़प होती है कि हमें जाना ही जाना है, तो बहरहाल किसी तरह पहुंचे और जाके अपना जो नया असलहा बनाया हुआ था उस जमाने का, उस असलहे के, खुद हजरत दाऊद का असलहा था, उस असलहे के जरिए से जालूत की पेशानी का निशाना लेकर, जिससे कोई लड़ नहीं पाता था, उसके लहीम और शहीम और जो उसकी जंगी हालत थी, कोई करीब जाने की जरूरत नहीं करता था, दूर से उन्होंने उस असलहे के जरिए से जब पेशानी का निशाना लिया और पेशानी में वो पत्थर अंदर दाखिल हो गया, असलहा कौन सा था वो अभी ज्यादा उसकी बहस नहीं करें, लेकिन यही असलहा था जो आज से 10 साल पहले 5 साल पहले फिलिस्तीन के बच्चे इस्तेमाल करते थे, और फिलिस्तीन के बच्चे उस असलहे को, पत्थर, छोटा पत्थर जिसको तेजी से घुमाना कि जब तेज घुमाया जाएगा तो स्पीड के जरिए से उसके अंदर जो तेजी आती है, उस तेजी के जरिए से जो कुव्वत पैदा होती है, जितना उसके अंदर पत्थर छोटा ही होगा लेकिन जितना तेजी से जाएगा उसके अंदर जो असर होगा, जो होता है कि वो टैंकों के मुकाबले, ठीक है टैंक है तो असलहे से कुछ होने वाला नहीं है, पत्थर से टैंक का कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उस पत्थर को टैंक पर मारने का मतलब यह है कि तुम्हारे टैंकों के मुकाबले में हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। ये मसला अहम है अजीजो, और ये हमेशा लाजिम है कि हौसले पस्त ना हो। मौजू भी हमारा आज ये रहेगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा फिलिस्तीन का मौजू नहीं, जो करबला की एक बहुत ही अजीम तरबियती रुख है उसकी तरफ ये मौजू रहेगा। तो इस वाक़े को हम ज्यादा तफसील से नहीं बयान करते, वहां पे हजरत मूसा सलामुल्लाह अलैह सिर्फ ये अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, रब्बे नजनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि 2 साल पहले जब माह रमजान में कुरानी दुआओं पे गुफ्तगू हुई थी, इस दुआ पे गुफ्तगू हो पाई थी कि नहीं हो पाई थी, शायद इशारा हुआ हो, तफसीली गुफ्तगू तो नहीं हुई थी। और फिर उसके बाद जब 10 साल बाद बिल माफ कीजिएगा, उसके बाद जनाब मूसा यहां से निकल के मदायन तक पहुंचे, मदयन तक पहुंचे और मिस्र की सरजमीन को क्रॉस कर लिया, फिरौन की हुकूमत के दायरे से निकल गए, तो निकलने के बाद जब वहां पहुंचे तो वहां पे कुरान ने यह बयान किया कि लम्मा वलम्मा तवज्जहा तिलका मदयन काला असा रब्बी अय्यहदीना सवा अस्सबील। जब वहां पहुंचे और रुख किया

0: शायर भी इस मतलब को जानता कितना अहम है। तो शेर यह था कि हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहा। ये वाकया एक बड़ा मसला है। हुसैन की कुर्बानी हो गई, नहीं रहे, जनाब ज़ैनब के पास भाई नहीं रहा, बच्चों के लिए बाप नहीं रहा, 4 साल की बच्ची बाप से महरूम हो गई, साये से महरूम हो गए, हम अपने शहीद रहबर के साये से महरूम हुए, तो महीनों से हमारे दिल का हाल क्या है? थोड़ी देर कोई सोचे कि कोई हुसैन इब्न अली से महरूम हो, ये तो गुलाम है, ये हमारे फुकहा, ये हमारे उलमा, ये तो हुसैन इब्न अली के गुलामों के गुलाम है। कोई मक्तल में जाके हुसैन इब्न अली से महरूम हो जाए? लेकिन कोई बात नहीं है, मेरा भैया नहीं रहा, हुसैन नहीं रहे, हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहा।
1: और लबैक या हुसैन,
2: लबैक या हुसैन,
1: लबैक या हुसैन,
2: लबैक या हुसैन।
0: और अगर जरा भी हुसैनियत से आशनाई हमारी हो जाए तो खुदा की कसम खा के कहते हैं, जल्दी कसम नहीं खाते हैं अपने मसाइल में तो कभी भी नहीं खाते हैं, लेकिन यहां मिंबर पे खुदा की कसम खा के कहते हैं कि अगर जरा भी हुसैन इब्ने अली की शहादत के राज से हमारी आशनाई हो जाए तो दुनिया की किसी भी जालिम ताकतों से हमें जरा बराबर डर नहीं होगा, नहीं होगा, न जालिमों से डर होगा, न किसी और से डर होगा, न माली मसाइल का डर होगा, न रिस्क का डर होगा, जो कभी नहीं होना चाहिए, जब अल्लाह है तो किस बात का डर। तो डर के बहुत सारी किस्में होती है, ना अवाम से डर होगा, अब आप तो नहीं है खुदा, लेकिन कुछ लोगों ने अवाम ही को अपना खुदा बनाया हुआ है। जी हाँ, इसकी शिकायत आप अल्लाह की बारगाह में जाके कर सकते हैं, क्योंकि यह है कि पत्थर जाके अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा, हम तो तेरी निशानी थे, हमें खुदा बना दिया। अल्लाह ने पत्थर को तो निशानी के तौर पर बनाया था, सब आयाते इलाही हैं, अल्लाह की निशानियां हैं, इन्होंने जो अल्लाह की निशानी थी अपनी जहालत में उसे खुदा बना दिया। तो पत्थर को यह हक हासिल है कि वो जाके शिकायत करे कि इन्होंने इन्होंने इन्होंने खुदा बनाया था। तो उसी तरह आवाम को भी हक हासिल है कि फला फला फला ने हमें खुदा बना रखा था, मेरे मुताबिक बातें करता था, मेरी पसंद की बातें करता था। अवाम की पसंद की बातें अगर की जाने लगे तो गोया अवाम को खुदा बना लिया है, समझ रहे हैं? तो हुसैन इब्ने अली का जिक्र हर खौफ को निकाल लेता है, अगर वो खौफ ना निकाले तो जिक्र हुसैन इब्ने अली ही नहीं किया गया है। तो हजरत मूसा जो कह रहे थे कि ना निकल गए थे, लोग ये समझे कि निकल गए डर के मारे निकल गए, अगर कोई डर के मारे निकला हुआ था तो वापस क्यों आता? वापस आता तो दरबार में वापस क्यों आता? सीधे दरबार में वापस क्यों आता? बिल्कुल अल्लाह की बारगाह में कोई तकाजा नहीं कि परवरदगारा फरिश्तों का लश्कर दे दे, परवरदगारा कुछ तो आखिर हमारे पास हो, कुछ भी तकाजा नहीं किया। जब अल्लाह पे भरोसा है तो फकत इतनी सी दुआ की कि परवरदगारा मेरा भाई हारून है वो मुझसे ज्यादा फसी है, मुझसे ज्यादा अच्छा बोलता है, और चूंकि वो मुझसे ज्यादा अच्छा बोलता है तो उसे मेरे साथ कर दे। हैं? याद तो सुनी हुई ना, बस मेरे भाई हारून को साथ कर दे। फिर हजरत मूसा ने ना असा मांगा ना यद बैजा मांगा, अल्लाह की नाम पर अल्लाह की राह में निकल गए तो ये अल्लाह खुद ही जानता है कि कहां पे रोक के उन्हें असा भी दे देना है, यद बैजा भी दे देना है। असा तो पहले से था लेकिन असा में जोर दे देना है, असा में तब्दील होने की सलाहियत दे देना है, ये सब अल्लाह ने खुद हजरत मूसा को फराहम कर दिया। तो एक मोमिन का काम है अल्लाह की राह में निकल जाना, असलहों में ताकत पैदा करना, यह अल्लाह का काम है। जब एक अल्लाह की जात असा में इतनी ताकत पैदा करती है कि पूरे फिरौन के निजाम को डगमगा देती है, जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करके फिरौन लाया था साहिरों को, चंद लम्हे बाद वही साहिर सब सजदे में गिरे हुए हैं। फिरौन उन्हें डांट रहा है कि मेरी इजाजत के बगैर तुमने सजदा कैसे किया? कबल अलादना लकुम, मेरी इजाजत नहीं हुई, मेरे इज्न के बगैर सजदा, अगर तुम्हें सजदा करना भी था तो पहले मुझसे तो इजाजत लेते, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, अलाउसलकुम, मैं तुम सबको सलीब पे चढ़ा दूंगा, मैं तुम्हारे दाहे हाथ को और बाएं पैर को काटूंगा, बाया हाथ काटूंगा तो दाहिने पैर को काटूंगा, اس

तरह तुम्हें काट के पीट के हाथ पैर काट के फिर सलीब पर चढ़ा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अब कोई मसला नहीं है, अब कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम अपने रब की तरफ पलट गए हैं, अब हमें इसकी जरा भी परवाह नहीं है। तो अल्लाह की राह में निकला जाए तो छोटे छोटे ड्रोन में भी अल्लाह वो सलाहियत पैदा करता है। 18,000 के ड्रोन में अल्लाह वो सलाहियत पैदा करता है कि एक एक बिलियन के असलों को तबाह कर देता है। ये मौजू यहाँ पढ़ा जा चुका है, इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा। रमजान में पूरा मौजू नुसरत इलाही का मौजू बहुत सारी आयतों के साथ पढ़ा गया, बाद में उसे जाके कहीं और कम्प्लीट किया गया, पूरा यह नहीं हो पाया। लेकिन ये सलाहियतें अल्लाह टेढ़े मेढ़े ऐसा में जब मूसा से कहा ये क्या है, ये क्या ले है, माहिया तुम्हारे हाथ में ये क्या है, तो कहा है हाथ क्या हिया असाया तवक्को अलैहि वहुस्सु बिहा अला गनमी वलीफिया मारिब नुखरा, ये मेरा असा है, इसे मैं कभी टेक लगा चलते चलते थक जाता हूँ तो थोड़ा असा पे टेक लगा के थोड़ा सहारा ले लेता हूँ, इससे अपने जानवरों को थोड़ा चराता हूँ, भेड़े भेड़ बकरियाँ इधर उधर जा रही होती हैं तो उन्हें संभालता हूँ असा से, और इससे और भी वलीफिया मारिब नुखरा इससे और भी कई सारे काम कर लेते, कभी पत्ते तोड़ दिए, कभी जानवरों को चारा देने के लिए ये असा का सहारा ले लेते हैं, कभी जानवरों से बचने के लिए बहुत सारे काम इससे करते हैं। कहा अभी तक जो तुम काम करते थे वो तो अपने असा से करते थे, ये असा तुम्हारा था या आयत नहीं कुरान की, अब आप कुरान में नहीं ढूंढिएगा, लेकिन ये मतलब यहाँ पे मिल गया कि ये असा जब तक तुम्हारा था तो इससे गनम चराते थे, भेड़ बकरियां चराते थे, पत्ते तोड़ते थे, टेक लेते थे, सहारा लेते थे, वहशी दरिंदों को भगाते थे, लेकिन अब इस असा को मैंने अपना असा बना दिया है और तुम्हारे यद बैदा वाले हाथ में दे दिया है, अब इस असा के जरिए से तुम पूरे फिरौन के तख्त को नाबूद कर दोगे, खत्म कर दोगे। ये मुजज़ा अल्लाह पैदा करता है। अब आपके लिए जरूरी थोड़ी नहीं कि आप 3,500 साल पीछे जाए फिरौन के दरबार में असा के मुजज़ा देखें, अभी मुजज़ा देखें भाई, अभी ये पिछले 108-109 दिन मुजज़ों से भरे हुए हैं, अगर देख सके तो मुजज़ों से भरे हुए हैं। किस गुरूर से आए थे, किस तमकनत से आए थे, हमारे हिंदुस्तान के मीडिया कह रहा था अभी मार देंगे, अभी ठोक देंगे, अभी खत्म कर देंगे, क्या हैसियत है, कौन टिक पाएगा, इतनी बड़ी नेवल ताकत, इतनी बड़ी हवाई ताकत, इतना बड़ा फला असलहा और ये BP बम्बर और फला बम्बर F-35, इन सब के सामने ईरान की हैसियत ही क्या है। तो वाकई ईरान की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन जिस पे भरोसा करके, जिस अल्लाह का नाम लेके वो हक के लिए खड़े हुए थे, जिस हुसैन इब्ने अली के जिक्र की तरबियत में पले हुए थे, उस अल्लाह का काम है कि इनके असलहों में ताकत दे, इनके इरादों में ताकत दे, इनके हौसलों में ताकत दे, अल्लाह के काम। मुआवजे नहीं देखे आपने आज के मुआवजे, हम उन मुआवजों की तलाश करते हैं, कोई पत्थर आए तभी समझ में आया कि मुआवजा हुआ है। जमाना बदल गया है भाई, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई, तो अल्लाह की तरफ से भी छोटी छोटी चीजें नहीं। जब इंसान का शऊर कम था तो उसे बहुत जाहिरी चीजें दिखानी पड़ती थी, चूंकि अक्ल नहीं थी, शऊर नहीं थी। अब आज का अक्ल और शऊर जो है वो 3,000 साल पुराना तो नहीं है, अब जब समझ ज्यादा हो गई है तो अल्लाह भी अपने मौजज़े ऐसे दिखाएगा कि अपनी समझ से देखो, तुम 3,000 साल पुराने आदमी तो नहीं हो कि लाके पहाड़ सामने खड़ा किया जाए, आग बरसाई जाए, पत्थर बरसाया जाए। जब तुम 21वीं सदी में हो तो 21वीं सदी के शऊर के लिहाज से मौजज़े देखना शुरू करो कि अल्लाह आज कैसे मौजज़े देता है। ठीक है, अब हम जुमला पूरा करें कि हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि इमाम ने जो इमाम ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो खुरूज, खुरूज यानी निकल पड़ना, खराजा, कुरान में भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, निकले, खराजा इन्नमा खरज, तो मैं निकल गया हूं, मैं मदीने की मस्जिद में नहीं बैठने वाला हूं, मैं मेहराब में जाके नहीं बैठने वाला हूं, मैं अपने घर में भी खामोशी से नहीं बैठने वाला हूं, मैं यमन की पहाड़ियों में भी जाके बैठने वाला नहीं हूं। रास्ते में 2 मंजिल सिर्फ रह गई थी, यानी आज तो 2 मुहर्रम हो गई,

उस दीन को, उस शरीयत को, उस मिशन को, उन अजमतों को कितना बचाएं, और उन्हीं के बचाने के लिए आप आए हुए हैं। ये अहतमाम जो कर रहे हैं, दूर दूर से आते हैं। कल मुझे कोई बता रहा था, सुबह में एक मजलिस होती है बाहर की, कि वो दो दो घंटे ड्राइविंग करके आते हैं। चले आपके पास तो करीब है, यहाँ भी मजलिस हो रही, कहीं और भी हो रही, कहीं अच्छा यहाँ नहीं जाएंगे तो वहां चले जाएंगे, लेकिन हर जगह ये सारी सहूलतें मौजूद नहीं है। तो लोग दो दो घंटे, तीन तीन घंटे ड्राइविंग करके आते हैं कि एक थोड़ी देर के लिए हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह का जिक्र मिल जाए। फिर एक साहब ने मुझे बताया कि आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर सुबह में फिर मजलिस होनी है तो सुबह में फिर वही ड्राइविंग करके आते हैं। और मैंने भी बाज़ मुल्कों में देखा है कि लोग कितनी कितनी दूर से आते थे पूरे अहतमाम के साथ कि नहीं, हुसैन इब्न अली का जिक्र होने जा रहा है। ये वही हरारत थी जो रसूलुल्लाह ने बताई हुई, और ये हरारत भी इसलिए है कि हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह सब हुसैन इब्न अली को देख रहे थे, लेकिन हुसैन इब्न अली खुद को नहीं देख रहे थे। जब ये फर्क आ जाए, जब ये समझ में आ जाए कि जब हम ये ना देखें कि हमारी अज़ादारी, हमारा घर, हमारी अंजुमन, हमारा इदारा, हमारा जुलूस, हमारी मजलिस, बल्कि ये देखें कि इस मजलिस में हुसैन इब्न अली क्या चाहते हैं, जहरा का लाल क्या चाहता है। कुर्बानियां जो दी गई हैं तो किस लिए दी गई हैं? तो इमाम ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, कल की मजलिस थोड़ा ताखिर हो गई थी, आज भी ताखिर नहीं होने दूंगा, सिर्फ इस लफ्ज को आपके सामने पेश कर देता हूँ। कल जो है इससे वो अहम नुक्ता आपके सामने इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो अर्ज किया जाएगा कि हुसैनी तरबियत का एक बुनियादी तरीन नुक्ता है कि इमाम का इन्नमा खर्च तो, मैं निकला हूं, मैं बैठा नहीं हूं, मैं निकला हूं। हुसैन इब्न अली की मुकावमत, हुसैन इब्न अली की मुजाहमत। अभी किसी ने आज सवाल मुझे फोन करके कि कहां ये लिखा हुआ है कि इमाम ने एहतजाज किया? इमाम ने क्या किया भाई? क्यों ये सवाल कहां से पैदा होता है? ये सवाल पैदा ही होते हैं कि नहीं, इमाम ने तो शहादत पहले से लिखा हुआ था, इमाम शहादत देंगे, तो इमाम ने शहादत दे दी, हम जिक्र करते रहे, हमको सवाब मिलता रहे। अल्लाह अकबर। इस सोच के साथ कभी भी वो करबला नहीं मिल सकती जिनके असरात देखने को मिले। और ये आप ना समझे कि हमारे यहां क्या मसला नहीं, आपको भी किसी मंजिल में उस करबला की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है। ये बातें इसलिए अर्ज की जा रही हैं कि शायद आपको भी उस करबला की जरूरत पड़ने वाली है जो राह है हुसैन इब्न अली की करबला है। यहां गलतफहमी नहीं हो, करबला जैसा कोई करबला नहीं हो सकती, असल करबला, लेकिन वो जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है कि बहुत सारे जालिमों के हौसले पस्त हो गए, बहुत बुरी तरह से पस्त हो गए, जंग कहीं और लड़ी जा रही है, लोगों के हौसले कहीं और पस्त हो रहे हैं। आप अपने भी आसपास देखें कि लोगों के हौसले मुमकिन है पस्त हो जाएं, लेकिन नहीं, ये मारका तो जारी है। मुजाहमत का माने है कि दो तरफा, मुकावमत के माने ही दो तरफा है। जब कहा जाता है मुबाहला, इसके माने ही दो तरफा है। जब कहा जाता है मुकाबला, ये सब अरबी लफ्ज है, यानी जब दो तरफ एक दूसरे के सामने आए। आज का सबसे बड़ा असला ये रहे, बोले शहीद बार बार 10 साल से बहुत ज्यादा इस बात पे ताकीद करते थे कि तुम्हारा असलहा ये नहीं है, ये मिसाइल, ये टैंक, ये ड्रोन, ये फला चीज नहीं है, उसमें भी आगे बढ़े, लेकिन सबसे बड़ा असलहा एक मोमिन का उसकी मुकावमत है, उसका रेजिस्टेंस है, उसका मजबूती से हक के लिए खड़े हो जाना है। और खड़े होने के लिए सामने कोई है जिसके मुकाबले में खड़ा होना है। तो हुसैन इब्न अली मक्के में बैठ के बहुत ज्यादा इबादत कर सकते थे, मस्जिद हरम के अंदर भी रह के इबादत, लेकिन मस्जिद हराम को छोड़ा, मस्जिद हराम से निकले, मक्के से निकले, हरम की सरजमीन से निकले कि इन्नमा खरज तो, मैं निकल रहा हूं। जो हुसैन इबादतें छोड़ के निकला हो, आज हम सिर्फ ये कहें कि हम भी जिक्र हुसैन इब्न अली कर रहे हैं ताकि हमारी इबादत हो जाए, तो ये इबादत हरगिज होने वाली नहीं है अगर वो मुकावमत नहीं हो जो हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह की मीरास। ठीक है, तो जब मुकाबला होता है तो मुकाबले में लाजमी तौर पर शहादतें भी होती हैं। मुकाबले के लिए और मुजाहमत, मुजाहमत यानी दो तरफा जहमत, ये लफ्ज उर्दू ही लफ्ज है, असल तो अरबी है, अरबी से फारसी में आया, फारसी से भी उर्दू में भी बोला जाता है, लेकिन आप लोग परेशान नहीं हो, जहमत का लफ्ज़ तो आप सब जानते हैं ना। जब जहमत दो तरफ होने लगे, दो तरफा, जैसे मुकाबला, मुकाबला तो आप सब जानते हैं, लेकिन कब्ल ये लफ्ज़ नहीं जानते, जब एक दूसरे के सामने कोई आगे खड़ा हो, सामने होने की वजह से उसको कहा जाता है।

0: शोर मत करो, मत चिल्लाओ, ये भी फंस जाएगा।
1: जल्दी करो अब्दुल साहब, ये धूमकेटा ज्यादा नुकसानदेह है, इसे जगह ना मिली तो फसलों को तबाह कर देगा। अब्दुल साहब,
0: आप लोग उस तरफ से उसे भगाइए ताकि ये फसलों से बाहर निकल जाए।

0: मर जा, जहन्नुम में जा, फसलों को तबाह करते हो, हाँ? मुसलमानों की
1: रुको अबुल साहब,
0: आराम करोगे,
1: हाँ? ध्यान से आगे जाना, ये कुछ भी कर सकता है।
0: मर जा, जहन्नुम में जा, गद्दुम के जाने खराब करोगे, मर जा।
1: मुझे से ज़ईफ़ को कितना थका दिया इसने,
0: कैसा मोटा सांड हो गया है, हमारी मेहनत को खा खा के इसके तो टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए।
2: ये दो तीरों से शिकार हुआ है।
0: इस मनुष्य लाश के लिए दो तीर भी कम है मुख्तार, इसको तो 100 तीरों से छलनी कर देना चाहिए।
2: मगर मैंने तो एक से ज्यादा दस्ती तीर नहीं फेंके।
0: तो क्या दूसरा तीर गायब से आया है?

0: की लाश की जगह कुत्ते का लाशा होता तो क्या उसको भी खाने की हवस करते?
1: कुत्ते का गोश्त कहाँ और सुअर कहाँ, इस जानवर ने सिवाय गंदम के कुछ और नहीं खाया। ये तो बिल्कुल दुम्बे की तरह है। इसकी खाल और गोश्त खासियतों से भरपूर है।
0: मसलन कौन सी खासियत?
1: इसकी गर्मा गर्म खाल पैरों के फालिज के लिए जुद असर है। इसका गोश्त भी कमर को मजबूत करता है।
0: तुम वाकई मुसलमान हुए हो या अभी तक दीने मजूस पर हो?
2: क्यों बहस और मुबाहसा कर रहे हो जरबी?
0: उस किसान ने मुझे पागल कर दिया अबू साक। इस मुर्दा सुअर के कबाब खाना चाह रहा है। जितनी भी आयतें हदीसें और दलीलें सुना रहा हूँ उसको कायल ही नहीं कर पा रहा हूँ। वाह वाह, बहादुर कयान के दीदार से हमारी आंखें रोशन हो। खुश आमदीद बहादुर।
2: ना खुश ना हो जरबी, खुदा तुम्हें कुव्वत दे।
0: तुम्हारी उम्र बढ़े। कयान जान, तुम इस शख्स को कुछ समझाओ, सुअर का गोश्त हराम है या हलाल?
2: मेरे भाई, सुअर का गोश्त खासियतों के अलावा एक ऐसा ऐप भी रखता है कि जब खाओगे तो पछताओगे।
1: कैसा ऐप पहलवान?
2: पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, खारिश की तकलीफ तुम्हें बेचैन कर देगी, बेहयाई पैदा कर देगा।
1: क्या वाकई?
2: चाहो तो आजमा लो।
1: नहीं पहलवान, ये बहुत शर्मनाक बात है। कुत्तों को खिला देते।
0: खुदा तुम्हारे बुजुर्गों को बख्शे, मैं तो उससे बहस कर करके थक ही गया था। सुअर का गोश्त खाया जाता तो इन जमीनों से बरकत खत्म हो जाती।
2: जरबी, ऐसा खाना लाओ जो सरदार सिपाह फर्जंद अली के शायर निशान हो।
0: जो हुक्म मेरे सरदार।
3: सबसे पहले

0: अरे ये तो खलीफा है, इन्हें क्या हुआ?
1: लगता है इमाम जख्मी हो गए।
2: ये तो साबात में थे ना?
1: हाँ।
0: ये खलीफा है।
3: क्या ये खलीफा है?
4: हसन इब्न अली हैं। ऐसा लगता है कल रात साबात में जख्मी हो गए हैं।

0: अरबों ने अपने खलीफों को कत्ल करने की आदत को जंग का रूप दे दिया है। बड़ा अच्छा बहाना है अरबों के मारने का।
1: दवासाए सैयदुल मुर्सलीन की हालत देखो, मदाइन को अली के दुश्मनों पर हराम कर दो। फरियाद या मोहम्मदा।

0: रंगने वाले मदाइन ने खून की आपाशी कर दी।
1: क्या वो खलीफा है, जख्मी हो गए हैं?
2: इसका मतलब खवारिज ने अपने मकसद पर अमल कर लिया। माविया शिकार हो गया और उम्र आस बाकी रह गया।
1: तुम किस दुनिया में हो? माविया तो दमिश्क की सब्ज़ जन्नत में खुदाई कर रहा है। ये जो देख रहे हो कि जख्मी है, ये हसन इब्ने अली हैं।
3: सुना है माविया ने अली के बेटे के सर की कीमत 1000 दिनार शामी और अपनी एक बेटी से शादी का वादा किया है।
4: कसम से,
3: तुम्हारी जान की कसम।
4: कितना महंगा सर है अली के बेटे का।
5: खलीफा को कूफा क्यों नहीं ले गए ये लोग?
6: क्या अर्ज करूं, शायद इसलिए कि बदायन पूरा मन है। चाहे कुछ भी हो मगर बदायन के अजम हजार तबीयत के कुछ तो बेहतर है।
5: लो अब इन लोगों ने आजा शुरू कर दी। इस सूरत हाल में शामियों को मदाइन पर हमला करने की जरूरत नहीं। परसों मदाइन के अरब और अजम एक दूसरे के जानी दुश्मन होंगे।
7: ऐ सैयद सरदार जवाना ने जन्नत, मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए। मैंने वो सब सुना है जो आप पर गुजरी है। मैंने सुना है कि आपके दूर नजदीक के सरदार माविया के सोने के सिक्कों के गुलाम हो गए हैं, उनका चेहरा स्याह हो। सईद इब्ने मसूद सकफी हूं मैं मौला, फरमा रवाए मदाइन। ममनून हूं कि आपने मेजबानी के लायक जाना। मेरी पलकों पे आपकी जगह है मदाइन के सफेद महल को अपने वजूद अक्दस की बरकत से मनवर कीजिए।
1: इमाम का बहुत खून बह गया है अमीर, हमें लगता है कि मारने वाले लईन का खंजर जहरीला था। हमें एक बड़े तबीब की फौरी जरूरत है, इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए कोई चारा कीजिए।
7: तबीब और बिस्तर दोनों हाजिर हैं सरदार, मेरे साथ आइए।

0: क्या कर रहे हो ये ना मुसलमान?
1: ध्यान से सरदार, कोई ऐसा काम ना करो कि मोहब्बत के जोश में मेरे हाथ भी कांप जाए।
2: मैं माफी चाहता हूं ए हकीम, मेरा कसूर नहीं था। मैंने एक लम्हे को आपको उस मलाऊन मारने वाले की जगह देखा।
1: आप थके हुए और वसवसे का शिकार हो गए हैं सरदार, लेकिन आप बरक हैं। मेरी बात माने, कुछ आराम करें और कुछ तवक्कल। जो भी खुदा की मर्जी होगी वही होगा।
2: हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है।

0: तुम यहाँ क्यों आए हो कियान? अपनी वफा मुझे दिखाने आए हो या मेरी तहकीर करने आए हो?
1: मैं इसलिए आया हूँ ताकि अरब के सोए हुए शेर को जगाऊं। तुम इराक की आबरू हो मुख्तार। मैं आया हूँ ताकि तुम्हारी गैरत के दरिया को तूफान से भर दूं।
0: तो मैं क्या करूं?
1: तुम अपने इमाम को जाके देखो। ये मुनासिब नहीं कि तुम्हारा इमाम तन्हा हो और तुम अपनी गंदम के उतार चढ़ाव की फिक्र में हो।
0: तुम लोग तो वहां थे, तुम लोगों ने क्या कर लिया?
1: तुम खुद को मुझ जैसे से मिलाओगे अबू इसहाक। तुम मुख्तार हो, अबू उबैद सकफी के बेटे, सरदार फातह ईरान के बेटे। कौन अरब ऐसा है कि अबू उबैद सकफी का नाम सुने और सर को ना झुकाए? तुम कहां और मैं कहां? उस ईरानी से जो अरब निजात को हकीर समझता है, उससे किस मौजजे की तवक्को रखते थे तुम मुख्तार?
0: सलमान फारसी के खंदक के मौजजे की तवक्को। तुम अपने नबी के नवासे के बराबर में एक सलमान बन सकते थे।
1: आज का अरब पैगंबर अकरम के जमाने की अरब से फर्क रखता है मुख्तार।
0: अच्छा, तो फिर बेहुदा बातों से पत्थर पर कील मत ठोको। आज के अरब के लिए अबू उबैद सकफी का नाम और शोहरत कोई मानी नहीं रखती। इससे बढ़कर शोहरत साहिब जुल्फिकार और दर खैबर को उखाड़ने वाले इमाम की है। उस गिरोह ने अपने नबी के चचाजाद भाई और दामाद पर रहम नहीं किया। शामी सोने ने इराकियों के दीन और अक्ल को जायल कर दिया है। कियान, कूफी आज इतना गिर चुका है कि जिसे खरीद कर रुस्वा कर दिया जाए, मुझ जैसों की आवाज से उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगी। जाओ कियान, जाओ। मैं फायदा उठाने वाला किसान रहूं पर निस्बत एक नुकसान उठाने वाले सिपाही के।
1: मुख्तार,
0: कियान, हमने इस बारे में काफी सुखनवारी कर ली और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। हमारी दोस्ती अपनी जगह, हमारा रास्ता अपनी जगह।
1: मुख्तार, एक दुश्मन जफाकार दोस्त बेवफा से बेहतर है। दुश्मन का तीर जिस्म पर पड़ता है मगर दोस्त का तीर जान पर। अली के बेटे की तन्हाई सिन्हा के जख्म से ज्यादा कारी है मुख्तार। मैंने सोचा था कि दोस्ती की लाज रखते हुए तुम मेरी बात मान जाओगे और हम दोनों अपने इमाम की गुर्बत का मरहम हो जाएंगे। अफसोस, अफसोस।

0: हो? कहाँ है मुस्तफा के टूटे हुए दांत? कहाँ है मुर्तजा का शिकस्ता सर? कहाँ है खैरुन्निसा का शिकस्ता पहलू? गिरिया करो, गरीबा चाक करो, खून आंखों से बरसाओ। कितने दांत सैयद है औलाद आदम ने उठाए।
1: होश करो भाइयों, होश करो। इमाम की जराहत और तन्हाई को कोई नुहा और गिरिया मरहम नहीं लगा सकता। वो तमाम लोग जो इमाम के हमरकाब थे और फिर बारी बारी चले गए और माविया के सुनहरे सिक्कों के असीर हो गए, वो भी खुद को अली का शिया कहलवाते थे। वो लोग जिन्होंने पैगंबर के बेटे के हाथ पर बैत की और उनसे जंग की दरखास्त करते रहे, जब शाम के दिरहम और दीनारों की खनखनाहट सुनी तो वही लोग इनके खेमे पर अपनी तलवारें लिए टूट पड़े और गारत कर दिया। उन बेगैरतों ने यहां तक के उनके जानमाज और बिछोने और दस्तार पर भी रहम ना किया। इस तमाहार और सोना पूजने वाली जमात की मिसाल कौमे बनी इसराइल और सामरी के बछड़े की सी है। ये लोग हदीस नबवी के मिस्ताक हैं कि फरमाया कि हर उम्मत का एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। जो जफा इमाम मुज्तबा पर हुई वो रोजे हश्र तक लानत अजाब का बाइस रहेगी। ये बदनामी और बेवफाई भी काफी न थी कि कल रात साबात मदाइन में एक खारजी मलून का खंजर रसूलुल्लाह के फरजंद का पैर जख्मी कर गया। मदाइन आज गुलिस्तान मुस्तफा के एक जख्मी चराग का मेजबान है। कोई ऐसा काम मत कीजिएगा कि कूफियों की तरह मदाइन वालों की पेशानी पर भी कोई दाग पशेमानी रह जाए। अपने गुस्से के ऊंट को और जहालत को लगाम दो ताकि हम कामयाबी के साथ खसारे के तूफान को तोड़ सकें। शामी चेले और अम्र आस के न नजर आने वाले फौजी अपने लिबास बदलकर आप लोगों के दरमियान आ गए हैं ताकि अरब और अजम की लड़ाइयों से और उमवी और अलवी फितनों से मदायन को पैगंबर के बेटे के लिए ना अमन बना सकें। उनके फरेब में मत आइएगा।
2: भाइयों, ये शख्स अबू तुराब का मंसूब फरमा रवा है कि जिसे इमाम मुस्तफा ने अपने मकाम पर बिठाया वो मदायन के लिए उनके टाट पहनने वाले हाकिम सलमान फारसी की सी खूबू रखता है, तो फिर इनकी बात को दिलो जान से मानिए। जनाब फरमारवा, हम जान बाजी और जान निसारी के लिए आए हैं, आप बताइए कि हम क्या करें।
1: इस्तिमा से परहेज कीजिए, खास तौर पर हुकूमती महल के सामने, क्योंकि ये सिपाहियों के लिए अमन अमान के हवाले से नुकसानदेह है। आहुजारी की जगह दुआ कीजिए और कही सुनी की जगह सब्र का दामन थामिए।

0: नाना, क्यों थनथनाती फिर रही हो? बड़े हिसाब की ताक करने हैं तुम्हें।
1: मेरा दिल आशुता हाल है सलीमा, इस सिर का प्याज की तरह जोश मार रहा है।
0: अगर दिल आशुता हो और दृष्टि पर हाथ मारियो तो हामला हो, उम्र पर आशिक हो।
1: इतनी बुरी हो गई अब भी है नहीं आती तुम्हें? उम्र मेरा दूध पी चुका है, मुझ पर आराम है।
0: अरे जाओ जाओ, तुम्हें हराम हलाल से क्या वास्ता।
1: नाना खाला, तुम आ गई मेरी जान। हन्नाना तुम पर कुर्बान हो जाए, काफी देर कर दी तुमने।
2: पता है शहर कितना पूरा शुभ है, लग रहा है कोई जलजला आ गया है।
1: हाँ तो जलजला आया है मेरी जान, जलजला आया है मेरा फूल। एक अरब जख्मी खलीफा आजम शहर में है, यानी जलजला आ गया। मैं डर रही थी कि तुम भी न पिस जाओ।
2: मैं भी शिकार हुई, एक अजम मेरी अंगूठियां लूटने आ रहा था, मैंने उसका दिमाग हिला दिया।
1: नहीं, मेरी जान की कसम खाओ।
2: आपकी कसम।
1: क्या शेरों वाला दिल है तुम्हारा बेटी।
2: मैं अजमों के कातिल सरदार की बेटी हूँ, हाथी सवारों के कातिल सरदार की बेटी, अबू उबेद सकफी की बेटी हूँ, मुख्तार की बहन हूँ। अगर मेरा मुर्गियों वाला दिल होता तो अब तक 10 चूजे मेरे इर्द गिर्द शोर मचा रहे होते।
1: जब ही तो उम्रे साथ तुम्हारी तलब में पर मार रहा है, बिल्कुल हक रखता है वो। तुम्हारे जैसी नौजवान शेरनी को शिकार करने के लिए हुनर चाहिए।
2: नौजवान शेरनी अपने शिकारची को खुद तलाश करती है।
1: मैंने हार मान ली खाला की जान, मैं रजस खानी करने के लिए नहीं आई हूँ, उमर का पैगाम सुनाने आई हूँ।
2: हाँ सुनाइए फितना गर खाला।
1: आओ, हसन इब्ने अली का सर तुम। हसन इब्ने अली का सर मेरी जान तुम्हें और उमर को लोगों की दिली मुराद तक पहुंचा दे। उमर इराक का बादशाह बन जाएगा और तुम इराक की शहजादी।
2: कैसा कमीना है ये उमर, मुझसे तवक्को रखता है कि मैं हसन का सर काटूं।
1: बेवकूफी मत करो जारिया, बहुत सोने हसन के सर के इनाम की लालच रखी हुई है। ना तुम हसन का सर काटोगी ना उमर, सैकड़ों इब्ने मुलजिम सफ में खड़े हैं।
2: मुझे क्या करना चाहिए?
1: तुम ऐसा कुछ करो कि मुख्तार मैदान में ना उतरे।
2: मुख्तार मैदान में नहीं आएगा।
1: कहीं तुम्हारे चचा ना भेज दें।
2: नहीं खाला, इससे पहले भी चचा ने इसरार किया मगर मुख्तार नहीं माना।
1: मगर इस बार किस्सा मुख्तलिफ है बेटा जारिया। मुमकिन है कि हसन की तन्हाई और मजलूमियत उसके दिल को हिला दे।
2: फर्ज कर ले कि मुख्तार मैदान में आ जाए, मगर मैं क्यों कुर्बानी का बकरा बनूं?
1: नादिया की मदद से तुम्हारी प्यारी भाभी। मुख्तार का नादिया से दीवानावार इश्क अब तक काबिल-ए-जिक्र है।

0: तुम नादिया को समझाओगी? नादिया मुख्तार के कानों में इश्क के नगमे गाएगी, मुख्तार के पाँव में जंजीर पड़ गई तो समझो।
1: नारिया तो मेरी हम मिजाज है।
0: तो फिर तो काम हो गया अरब की शहजादी, क्या शादी होगी।
2: हनाना, तुमने काता भी सिया भी और दुल्हन भी तैयार कर ली, बहुत मुबारक हो। पर हमारी मिठाई का क्या होगा?
0: तुम्हारे अधेड़ उम्र के कान तुम्हारी डसने वाली जबान से ज्यादा तेज हैं। तुमने शादी के अलावा क्या सुना है?
2: तौबा, मेरे कानों में कीड़े पड़ जाएं अगर शादी के अलावा कुछ और सुना हो मैंने। मिठाई,
0: ये लो सलीमा, मुझे यकीन है तुमने शादी के अलावा कुछ और नहीं सुना। अगर तुमने ख्याल आरई से काम लिया तो उमर तुम्हारी ये छुरी जैसी जबान को कुत्तों का लकमा बना देगा।

0: का बुखार है तुम्हें? तुम्हारा तो पूरा बदन आग में जल रहा है सरदार।
1: मेरे दिल पर गमों के दाग हैं अमीर, इस कदर मर्दों की नामर्दी का दाग।
0: एक ठंडे पानी का बर्तन लाओ, आओ सरदार के जूते उतारो, इसका फौजी लिबास उतार कर

0: मुझे यकीन था तुम आओगे।
1: मैं आ गया मगर तलवार के बगैर।
0: कब अपनी तलवार से दोस्ती करोगे मुख्तार?
1: उस वक्त तक नहीं जब तक तुम्हारे जैसा शख्स अक्ल की जगह दिल के हुक्म पर चले। मेरी तलवार म्यान में ही रहेगी।
0: बहुत बदल गए हो अबू इसहाक।
1: अकलमंद हो गया हूँ कियान। इस दफा मैंने सोचा है कि अपने दिल की जगह अपनी अक्ल को इस्तेमाल करूँ। कुदरत के आदाब और तहारत के आदाब में बहुत फर्क है सरदार। वो फरमादावा जो बगैर तदबीर के मैदान जंग में उतर आए वो अपनी भी जानों का नुकसान करेगा और फौज का भी।
0: अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो किसी गलत सोच का शिकार हो गए।
1: अगर कोई सरदार अपनी तलवार को म्यान में रखे और किसी हारी हुई जंग में न जाए तो ये फेल शैतान की अतात नहीं है। ये इज्तनाब खुदकुशी है जो कि वही इलाही की पैरवी है। अपने ही हाथों से खुद को हलाक मत कीजिए। जब आप लोगों ने जंग के लिए कमर कस ली थी तो मैंने खतरे के बारे में बताया था मगर ना ही तुमने सुनी और ना इमाम ने। अपने दिल को एक मुट्ठी भर कूफियों के वादा खिलाफ इज्तमा की बातों से मुतमईन कर लिया तुम लोगों ने। बिल्कुल उस बेयार मददगार शख्स की तरह जिसने सैलाब में तख्ते की बजाय पत्थर को अपने साथ ले लिया। मैं आज के बाद अपनी तलवार को उस जगह नियाम से निकालूंगा जब मैं खुद चिल्ला के कहूँ हमला।

0: मुख्तार, कुछ खबर है कि तुम कहाँ होते हो?
1: फसलें तैयार हैं चाचा जान, गंदम की कटाई कर रहे थे। खुदा का शुक्र है कि इस साल बगैर नुकसान की फसलें काटी हैं।
0: ये भी एक पहेली है मेरे लिए। इन हंगामी हालात की जद पर जहां अलवियों की जिंदगी और मौत का सवाल है, अपना सर छुपाकर खेती बाड़ी और जरात में मसरूफ हो गए हो। क्यान, क्या तुमने इसे बताया कि इमाम ने किस किस तरह जख्म उठाए हैं?
2: जी हां अमीर, मुझे उम्मीद है कि गंदम की फसलों की खुशी सही सुनने के दरमियान हायल ना होगी। इमाम अब कैसे हैं?
0: जख्म गहरा है क्यान, जरबत की काट रान के मग्स और हड्डियों तक सरायत कर गई है। शुक्र खुदा, खंजर जहीला नहीं था।
1: गुस्ताखी माफ चाचा जान, आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मैं किसी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो गया हूं। राह हलाल से कस्बे माश करना खुदा की राह में जिहाद से कम नहीं है, और मैं खुदा का शुक्र है कि जमीन से मुकाबले की इस जंग में खुदा की राह में लड़ने वालों की तरह नुकसान उठाने वाला न था।
0: माश की तलाश भी एक किस्म का जिहाद है, मगर उस वक्त हरगिज नहीं कि जब कुछ लोग तलवार उठाए हुए तुम्हारे दीन की जड़ काट देना चाहते हैं। जानते हो इमाम सफेद महल की तरफ क्यों आए हैं मुख्तार?

0: जानता हूं।
1: क्यों आए हैं?
0: उस एतमाद की बिना पर जो उन्हें आप पर है।
1: बहुत खूब। क्या यह हमारी कम इज्जत अफजाई है कि मौला ने जो जिस्मानी और रूहानी जख्म उठाए हैं उसके बावजूद हमें अपने खास लोगों में शुमार करके हम पर भरोसा करते हैं? इस मौजूदा सूरत हाल में हम अहले बैत नबूवत के अजीज हैं। हैफ नहीं है कि इस अपने पन को जमीन और फसलों की नजर करके जाय कर दें।
0: मुझसे कौन सी मदद हो सकती है?
1: दुश्मन को पीठ मत दिखाओ, मैदान में आओ, जंगी लिबास पहनो, अपनी तलवार के कब्जे को थामो और अपने चचा की कमर को मजबूत करो कि हम दोनों इन शयातीन के शर को नाकाम बना दें।
0: इस वक्त दुश्मन के शर को खत्म करने के लिए ऐसी तलवार होनी चाहिए जो जहालत की गर्दन तोड़े, और मेरे पास ऐसी तलवार नहीं है।
1: यानी तुम फिर जिहाद से भागना चाहते हो, वो भी ऐन उस वक्त जबकि इमामत ने खुल्लम खुल्ला तुम्हारी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया है।
0: चाचा जान, मैं एक 13 साल का नौजवान था कि मेरे वालिद मारे गए और आपने मेरी कफालत कबूल की। बस हक़ पदरी आपके पास है। अदब की रस्में और शरीयत के अहकाम ये हुक्म करते हैं कि मैं आपकी इताअत करूं, तो कबूल है, मगर ये तवक्कुर रखता हूं कि फहम व शऊर की हद में मुझसे बात करेंगे आप। मैं एक 40 साल मर्द हूं। वो शख्स जिसने जवानी से ही अपनी तलवार से बैत कर ली हो, वो यकीनन मैदान जंग से भागने को आर समझता है, मगर जंग लड़ने के भी कुछ कायदे कानून हुआ करते हैं। दौलत तराजू में, यानी जोर बाजू में। हजरत शैतान के हाथ में आज सोना है चाचा जान। इस जंग में कदम रखना भी गलती था और आगे बढ़ाना भी गलती दर गलती है।
1: खुदा की पनाह शैतान के वसवसे से। ज़बान शैतान है जो तुम्हारे मुंह में चल रही है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे इमाम जंग के कायदे और कवानीन से तुम्हारी तरह वाकिफ नहीं थे, और ना ही उन्हें दुश्मन की कोई पहचान थी। उन्होंने जबरदस्ती जंग का इकदाम किया था मेरी जान, उसी तरह जैसे मौला अली ने सिफीन में जीती हुई जंग की हार तस्लीम की। इमाम ने शिकस्त गुर्बत और तन्हाई को अपनी जान पर कबूल किया ताकि इस कौम को उनकी जहालत से बाखबर कर सकें। खुदा की कसम, अगर तुम अपनी जान बचाने के लिए दुनियादारी का बहाना कर लेते तो मैं गवारा कर लेता, बनिस्बत ये कि तुम अपने इमाम के इल्म पर शक करो। खुदाया, ये शक गुमराही का निशान है या हिदायत का? मैंने तो इसे नापाक लुकमा नहीं खिलाया था, तो फिर क्यों कर मेरी जिंदगी के दरख्त ने यह तल्ख मेवा दिया?
0: तल्ख मेवा जहरीले मेवे से बेहतर है। मैंने अपने अकीदे का सच्चा इजहार किया है, कसूर आपका है, कुछ छुपाने की आदत ही नहीं होने दी। क्या करूं बताइए।
1: अपनी जान और दिल से मेरी मदद करोगे?
0: अगर ऐसा ना होता तो मैं सफेद महल ना आता। फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है।
1: माविया ने इमाम के सर के बदले 1000 दीनार शामी और अपनी बेटियों में से एक देने का वादा किया है। जानते हो इसका मतलब क्या है?
0: हाँ, यानी इस वादे ने लालच का भूत बहुत सौ के अंदर पैदा कर दिया, यानी जमीन इमाम के लिए गैर महफूज हो गई है, और आज से सफेद महल के खादमीन और मुहाफिजीन सब के सब मुआविया के खुफिया फौजी हो सकते हैं। आप इतने सारे गैर मरे दुश्मनों में इमाम की जान को कैसे बचाना चाहते हैं?
1: बहुत बड़ा वजन है हमारी गर्दन पर। कुछ ऐसा करो कि इस वजन से हमारी कमर टूट।

0: किस फिक्र में हो मेरा फूल?
1: मतलब क्या ऐसा हो सकता है हनाना? मुख्तार अगर कोई काम करना चाहे तो हाथी भी उसका रास्ता नहीं रोक सकता।
0: यानी तुम इश्क के मौजे से गाफिल हो। इश्क वो वाहिद गिरा है जो मुख्तार जैसे शेर को गिरा सकता है।
1: अगर नारिया की आंखों की जादूनुमा तेजी ठंडी हो गई तो फिर क्या?
0: नादिया कोई बेहुनर औरत नहीं है खालक की जान, उसके भी कम मुकाबिल नहीं थे। मैं खुद उनमें से एक हूँ। आज तक मैं उस हसद की आग में जल रही हूँ।
1: क्या वाकई तुम भी मुख्तार की आशिक थी खाला जान?
0: मुख्तार जैसा दिलावर अरब की काली आंखों वाली लड़कियों की एक बहुत बड़े हुजूम।
2: Hadi git halacığım, zamanımız az. Nariye'ye söyle, aslanından elini çeksin. Artık onun sahibi değil.

है। और अगर आप हजरात को याद होगा तो कल रात मैंने ये अर्ज किया था वहदानियत खुदा के बारे में, तौहीद इलाही के बारे में, कि सबसे बड़ा और सबसे अजीम जुर्म और गुनाह शिर्क है, यानी कि अल्लाह की जात से शिर्क करना, किसी को उसका शरीक बनाना, टू एसोसिएट पार्टनर्स टू हिम, ये सबसे बड़ा गुनाह है। ऐसा गुनाह के खुदा माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही, बेशक अल्लाह उसको हरगिज़ माफ नहीं करता जो उसकी जात से शिर्क करता है। वह यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और शिर्क के अलावा वो जिसे चाहता है माफ कर देता है। इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सूरह लुक़मान में है। वमन युशरिक बिल्लाह फ़क़द इफ्तरा इथ्मन अज़ीमा, और जिसने अल्लाह की ज़ात से शिर्क की उसने गोया एक अजीम गुनाह का इर्तिकाब किया। और हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर इब्ने मोहम्मद सादिक़ सलवातुल्लाहि वसलामुहु अलैहि ने फरमाया कि अकबरुल कबाइर अश्शिर्क बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह जो है वो शिर्क है। अब ये शिर्क जो है उसकी दो किस्में हैं। एक को कहते हैं शिर्क जली और दूसरे किस्म को कहते हैं शिर्क खफी। शिर्क जली यानी कि जाहिरी तौर से अल्लाह की ज़ात से शिर्क करना, ओपनली अल्लाह की ज़ात से शिर्क करना, उसके ज़ात को ज़ात से किसी को उसका शरीक बनाना, जैसे एक खुदा से ज़्यादा मानना, कई खुदाओं में मानना, या फिर बूतों की परस्तिश करना यानी आइडल वर्शिपिंग करना, इसे कहते हैं शिर्क जली, टू ओपनली एसोसिएट पार्टनर्स टू अल्लाह सुबहानहु व तआला। ये जुल्म है, अजीम है, यह ऐसा गुनाह है खुदा हरगिज माफ नहीं करेगा। दूसरा किस्म शिर्क का शिर्क खफी है, यानी छिपा हुआ शिर्क, पोशीदा शिर्क, जो जाहिरन बंदा अल्लाह पर ईमान रखता है, उसकी वहदानियत को कबूल करता है और मानता है, लेकिन कभी कभार अनजाने में या जानबूझकर अपने कारनामों से वो शिर्क करता है अल्लाह की ज़ात से। हमें कहा गया है कि इस किस्म के शिर्क से तुम बचा करो। शिर्क खफी यानी जो शिर्क पोशीदा है, भाई मुसलमान है, हाँ कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, लेकिन बाज औकात अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे कारनामों को अंजाम देते हैं कि जिससे ज़ाते परवरदिगार से शिर्क होता है, है या नहीं। हमें कहा गया कि और ऐसे शिर्क में से एक जो हमें बताया गया है रिवायतों के अंदर, वो रियाकारी है। रियाकारी यानी कि टू शो ऑफ, नेक अमल अंजाम देना इस जिंदगी में खुदा के लिए नहीं बल्कि दिखावे के लिए, हाँ नमाज पढ़ना अल्लाह के लिए नहीं, दिखावे के लिए लोगों को कि देखो हम बड़े नमाजी हैं, हाँ हज को जाना अल्लाह के लिए नहीं, दिखावे के लिए होता है, लोग हज को जाते हैं दिखावे के लिए, हज पढ़ के आते हैं हाजी बनकर, और फिर कहते हैं कि भाई हम हज पढ़ के आए हैं, जिंदगी में 25 हज हमने की है, 30 हज वो हम गए हैं हाजी हैं, भाई दिखावे के लिए, खुदा के लिए नहीं। या अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, खर्च करते हैं दिखावे के लिए, खुद के भमकारे के लिए, हाँ ताकि लोग उनकी तारीफ करें कि देखें फलां सखी है, कितना बड़ा सखी है, सखावत करने वाला है, लेकिन ये दरअसल सखावत जो है लिल्लाह नहीं कर रहा, लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है ताकि लोग उसकी तारीफ करें, उसके लिए वाहवा और बहवा करें, उसे हार पहनाएं, हाँ इसे कहते हैं रियाकारी टू

था, एक कॉमन पर्सन था, आलिम दीन नहीं था, लेकिन रोजाना आगा के घर पर आया करता था बैठने के लिए रोजाना। उससे किसी ने सवाल किया कि रोजाना क्या करने के लिए जाते हो, तो उसने कहा, एक के पैगंबर ने कहा कि आलिम दीन के चेहरे को देखना इबादत है, इसलिए जाता हूं ताकि इबादत का अजर और सवाब मुझे मिले, और जब मैं वहां जाके बैठता हूं, लोग आते हैं मसाइल लेकर, तो मेरे भी इल्म में इजाफा होता है, मुझे भी सीखने को मिलता है, इसीलिए जाता हूं। तो ये परोस था कि जो आगा मोहसिन हकीम के यहां हर रोज आया करता था, आगा उसे अच्छी तरह से जानते भी थे। एक रोज हुआ ये कि वो आगा के साथ बैठा हुआ था, आगा के पास बैठा हुआ था, और कुछ लोग आए। होता है मराज इज़ाम जो हमारे हैं, अगर आप उनके यहाँ जाएँ तो देखेंगे कि मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ बुल्दान से लोग आते हैं मुलाकात के लिए, और जब मुशहरीन के पास आते हैं तो एक एटिकेट होता है जिसे वो ऑब्जर्व करते हैं, आते हैं, हाथ को चूमते हैं, माथे को चूमते हैं, हाँ मौलाना कहकर पुकारते हैं, सैदना सैदी कहकर पुकारते हैं, ये एहतराम है या नहीं। तो ये शख्स बैठा हुआ था और ड्रामा देख रहा था, तमाशा देख रहा था कि लोग आए हैं, कोई हाथ चूम रहा है, कोई माथा चूम रहा है, कोई सैयदना कहकर पुकार रहा है, कोई मौलाना कहकर पुकार रहा है। न जाने इस शख्स को क्या हुआ कि एक मर्तबा अपनी जगह से खड़ा हुआ, आगा के करीब आया और कान में आगा से कुछ कहा, उसका यह कहना, और वहीं पर आगा रो पड़े, ज़ारो कतार आगा रो पड़े, और उस शख्स की तरफ देखकर उसने कहा, खुदा की कसम तूने सच कहा। अब उसने आगा के कान में कहा क्या कि आगा रो पड़े, उसने आगा से ये कहा, सैयदना ला यगुर्रन्नका हाउला, जरा होशियार रहिएगा, खबरदार रहिएगा कि ये लोग जो आपके पास आ रहे हैं और आपकी तारीफ कर रहे हैं, कहीं ये तुम्हें धोखा न दे दे, फरेब में न ले ले, ये तुम्हें बड़े बड़े अलकाब से पुकारेंगे, तुम्हारे हाथ को चूमेंगे, तुम्हारे माथे को चूमेंगे, और तुम ये समझोगे कि बस तुम ही तुम हो, और खुदा को भूल जाओगे, फरामोश कर। जिंदगी में यही तो होता है, जब किसी की तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करते जाओ तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, है या नहीं। बिल्कुल उसी तरह के जैसे किसी को आप क्रिटिसाइज पे क्रिटिसाइज करते जाओ तो उसका भी दिमाग खराब होता है। ला यगुर्रन्नका हाउला, और आगा तकवा की मंजिल देखे, एक मरतबा रो पड़े और कहा, खुदा की कसम तूने सच कहा। यह है वो पहला गिरोह कि जिसको पेश किया जाएगा कयामत के दिन, और खुदा कहेगा कि रियाकारी के लिए तो शो ऑफ, अब जिससे तुमने जो तलब किया था वो तो तुम्हें मिल गया, मेरे पास से तुम क्या चाहते हो। दूसरा गिरोह सर्वतमंदों का होगा, दौलतमंदों का, हा इनको बुलाया जाएगा, मालदार लोगों को। अब मालदार भी लोग जो हैं दो किस्म के होते हैं, एक वो होते हैं कि जिनको खुदा माल देता है, ये सही माने में वो लोग हैं जो कह सकते हैं, हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी, ये हमारे रब के फजल से हैं। और दूसरे वो हैं कि जो अपने तरीक़ों से माल को हासिल करते हैं, गस्ब करके, खियानत करके, उनका तो जिक्र हो फिलहाल नहीं हो रहा, लेकिन सर्वतमंदों को पेश किया जाएगा अल्लाह की बारगाह में, खुदा उनसे भी सवाल करेगा, पूछेगा कि भाई तुमने इस माल का इस्तेमाल कैसे किया था। और ये भी आप अपनी हांकने लगेंगे, हाँ कहेंगे कि परवरदिगार हमने इस माल से खैरात किया था, हाँ मस्जिदें हमने बांधी, मिसाल के तौर पर, हाँ इमाम बारगाहें हमने बांधी, हमने गरीबों की मदद की, हमने ये किया, हमने वो किया। खुदा के जो नियत को जानता है उस वक्त कहेगा कि ये सब कुछ तुमने मेरे लिए तो नहीं किया था, ये तुमने खुद के लिए किया था ताकि लोग तुम्हारी तारीफ करें, हाँ कि ये बड़ा सखी था, बड़ा जनरस और सखावत करने वाला था, तुम्हें हार पिराया जाए, तुम्हारा नाम आए हर जगह पर, हाँ तुम्हारा पोस्टर लगाया जाए, इसलिए तुमने किया था। जो तुम जिस चीज के तुम तलबगार थे वो तो तुम्हें दुनिया ही के अंदर मिल गए, अब मुझसे क्या चाहते हो। तो यह है दूसरा गिरोह जिनको पेश किया जाएगा। और तीसरा गिरोह जो हदीस में आया है शुहदा का होगा, जिन्होंने अल्लाह के राह में अपनी जान दे दी होगी, शुहदा को पेश किया जाएगा, खुदा उनसे सवाल करेगा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम हो कौन, तुमने क्या किया। तो वो कहेंगे कि परवरदिगार तेरी राह में हमने अपनी जानें दे दी, या हम जिहाद करते करते

शुरू हो गए, वुंडेड हो गए, जिसकी वजह से जिंदगी भर हमें दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। अब तू हमें अजर दे। फिर से खुदा के जो नीयतों को जानता है, खुदा अमल को नहीं देखता, पहले नीयत को देखता है। इस बात को याद रखिएगा, खुदा अमल को पहले नहीं देखता, नीयत को देखता है, किस नीयत से बंदा अमल को अंजाम दे रहा है। तो खुदा उस वक्त उनसे कहेगा कि तुमने अपनी जान को मेरी राह में नहीं लुटाया, तुम इसलिए लड़ने के लिए गए थे कि तुम अपनी क्या बोलते हैं ताकत को, अपने करेज को लोगों के सामने जाहिर कर सको। उस जमाने में ऐसे होता था कि लोग आते थे लड़ने के लिए सिर्फ अपनी ताकत और कुदरत दिखाने के लिए, वैलोर जिसे कहते हैं, और करेज दिखाने के लिए, या माल गनीमत हासिल करने के लिए, बूटी हासिल करने के लिए। खुद जनाब सरकार सैयदुश्शुहदा के बारे में भी हमें ये मिलता है। आप मक्के से रवाना हुए, करबला तक हर मंजिल पर आप रुके और अपनी पहचान दी कि मैं कौन हूं, किस मकसद से निकला हूं। कुछ लोग आपके साथ हुए आए, किस मकसद के साथ? इस मकसद के साथ कि हम फर्जंद रसूल की नुसरत करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि इस गज़वे में, इस लड़ाई में फर्जंद रसूल जीत जाएगा तो हमें माल गनीमत में से कुछ मिलेगा और कुछ पोजीशन भी मिलेगा। आए थे, तारीख है, पूछ लीजिए आप उलमा से। आगे चल के जब पता चला कि यहां मौत के सिवा कुछ नहीं है तो इमाम को छोड़ के चले गए। ऐसे भी लोग हैं तारीख के अंदर, यह तारीखी हकीकत मैं सुना रहा हूं। खुदा कहेगा कि तुमने अपनी जान को, यानी इंसान अगर अपनी जान तक दे दे, अगर लिल्लाह नहीं तो फजूल है। अगर अल्लाह के लिए किसी गजवे में, किसी जंग में मुसलमानों के मुकाबले में एक काफर आया एक सियाह रंग के खूबसूरत गधे पर बैठकर, किसी जंग में, तो एक मुसलमान की नजर पड़ी, उसने चिल्लाकर उस काफिर से कहा कि या लहू मिन हिमारिन जमील, ए वो कि जो इस खूबसूरत गधे का मालिक है, तुझे कत्ल करके तेरे इस गधे को, गधे का मैं मालिक बन जाऊंगा। ये हकीकत है, तारीखी हकीकत है। हुआ क्या, अपने नियाम से तलवार को उसने निकाला, उसके मुकाबले में गया, उसकी शामत आ गई, कत्ल हो गया। जंग के बाद जब पैगंबर को यह बताया गया कि यह फुलां शख्स जो है राह खुदा में शहीद हुआ है, तो आपने अपने मुंह को फेर लिया, आपने कहा कि यह फी सबीलिल्लाह नहीं, राह खुदा में नहीं, बल्कि यह शहीदुल हमीर है, यानी कि गधे की राह में शहीद हुआ है, अल्लाह की राह में शहीद नहीं हुआ जी। तो मेरे दोस्तों, यह है रिया गारी है कि जो कुछ भी हम इस दुनिया के अंदर करें, खालिसतन लिवजहिल्लाह करें, अल्लाह के लिए करें। जरूरी यह है कि हमारी नीयत में इखलास हो, यानी कि सिंसियरिटी ऑफ इंटेंशन हो कि ये अल्लाह की खुशनूदी के लिए हम काम को अंजाम देते हैं, ये जरूरी है। खुद पैगंबर को हुक्म दिया जा रहा है कुरान मजीद के अंदर, कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, ए मेरे हबीब लोगों से कह दो कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपने दीन के अंदर इखलास से अल्लाह की इबादत करूं। हाँ, इखलास यानी नियत सिर्फ अल्लाह के लिए। इखलसु अमलकुम, पैगंबर फरमाते हैं अपनी नियत को मुखलिस बनाओ, खालिस बनाओ, सिंसियर बनाओ खुदा के लिए। फइन्नल्लाहा ला यक़बलु इल्ला मन खलस लहु, क्योंकि खुदा सिवाय मुखलिस बंदे के किसी और के अमल को कबूल नहीं करता। इखलासुन नियत, रियाकारी छोड़ें, चंद दिनों की जिंदगी है, उन लोगों को शो ऑफ करें कि जो हमारी तरह चलते फिरते मिट्टी के पुतले हैं, उनके लिए या खुदा के लिए नेक आमाल को हम अंजाम दें। देखें जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से फरार करके मदियन आए हैं, मिस्र से यानी कि इजिप्ट से फरार किए, भागे फिरौन के जमाने में और आए मदियन, कई दिनों तक सहरा में रहे,

Kosambala, Side se lagaya, kaha ehor, maine tujhe maaf kiya, mere khuda ne bhi tujhe maaf kiya, teri maa ne tera naam hur rakha hai, duniya mein bhi tu azad hai, aakhirat mein bhi tu azad hai. इसके बाद रिवायतों में हमें मिलता है कि मौला हूर को लेकर अपने साथ खैमे की तरफ जाने लगे है हूर माय इमाम के जा रहे थे कि एक मर्तबा क्या देखा ये कि खैमे के पास छोटे छोटे बच्चे जमा हैं हाथों में खाली कूजे लिए हुए खड़े हैं और आपस में एक दूसरे से हम कलाम हैं कुछ कह रहे हैं हूर ने जब कान लगा के सुना तो क्या सुना कि ये छोटे छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे से कह रहे थे कि देखो हुर आ गया है ऐसा लगता है कि अब खैमे में पानी भी आ जाए अब पानी भी खैमे में आ जाएगा बस ये सुनना था एक मर्तबा हुर रुक गए कहा फरजंदे रसूल खुदा के लिए मुझे खैमे में मत ले जाइएगा ए फरजंदे रसूल मैं शर्मिंदा हूं बस आप मुझे इजाजत दे दीजिए ताकि मैं रन को चला जाऊं मौला ने कहा ए हो तुम तो हमारे मेहमान हो लेकिन अफसोस पानी का एक कतरा भी हमारे खैमे में नहीं कि मैं तुम्हारी खातिर कर कहा फरजंदे रसूल शर्मिंदा मत कीजिए हमें रन की इजाजत दे दीजिए अजादारों बहुत इसरार के बाद हुर को रन की इजाजत मिली मैंने आपकी जहमत को तमाम किया इजाजत मिली है तारीख में हमें मिलता है सबसे पहले लड़ने के लिए हुर का जवान बेटा मैदान में गया कुछ देर की लड़ाई के बाद जख्मों से चूर चूर होके जब हुर का बेटा जमीन पर गिरा है तो ज़ईफ बाप को मदद के लिए पुकारा जो ही जवान बेटे की आवाज ज़ईफ बाप के कानों से टकराई आंखों में अंधेरा आ गया इस तरह दौड़ते हुए मैदान की तरफ गए हैं कि बार बार जमीन पर गिरते थे और उठते थे इतने में पीछे से किसी ने संभाला ए होर जवान बेटे की मैयत पर जा रहे हो हुसैन अभी जिंदा है मैं कहूंगा हुर बड़े खुश नसीब थे जवान बेटे की मैयत पर जा रहे थे संभालने के लिए मेरा मजलूम इमाम जिंदा था एकाश असरे आशूर से पहले आते हुसैन जब करियल जवान की मैयत पर आए हैं जवान बेटे की मैयत न उठ सकी पुकार कर कहा ए बनी हाशम के बच्चों आओ इस ज़ईफ बाप से करियल जवान बेटे की عظم الله اجورنا واجوركم بمصابنا بالحسن التماس دعاء ماتم حسين

तो मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूँगा। कहा, अगर मेरी बात पे राजी हो तो अपने सर को मेरे लिए झुकाओ। बस उसने झुकाया, फांसी गई। शैतान का काम इतना है, बस बसे करता। क्यों? जब तक हम मादे से अटैच रहेंगे, ऑप्शन ओपन है शैतान के पास। जाने मोहतरम, ये बहरहाल आप उस लेवल तक पहुंचना है, उस सिस्टम को पहुंचना है, अपने इमाम तक पहुंचना है, तो ये दुनिया कभी इजाजत नहीं देगी कि आप इमाम तक पहुंचे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आपको रोकेगी। इसीलिए ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये जो इलाही निजाम है उसमें हम अपने आप को कैसे पहुंचाएं। सूरह दुआए ऐदा पढ़ते, अल्लाहुम्मा रब्बन नूर अल अजीम व रब्बल कुर्सी अल रफी, दुआए पढ़ते हैं ना, कि सबसे पहली चीज उस नूर को समझना है। जब तक ये नूर, जहां कुरान कह रहा है कि ये जो नूर है, खुदा क्या करता है, खुदा जुलूमात से, अंधेरों से उठाता है, कहां लेके जाता है, नूर की तरफ। यो खुरे जो अब आयत कुर्सी में ही पढ़ते हैं ना आप, कि इंसान को जुलूमात यानी अंधेरे, अंधेरे से उठाता है, नूर की तरफ लेके जाता है। अब ये नूर क्या है? अल्लाह नूर समावात वल अर्ज, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। वो नूर कि जब तक इंसान उस नूर की तरफ मुतवज्जा नहीं है, इसी मादे में फंसा हुआ है। ये दुनिया का सिस्टम ये है, ये अंधेरा है। ये रोशनियां, जाहिरी रोशनियां हैं, ये रोशनी, लेकिन अगर इंसान बातिन, अगर इंसान का तारीख है, दुनिया की कोई रोशनी इंसान को हिदायत नहीं दे सकती। आप माशाल्लाह, आपने सलाम सुना जो पढ़ रहे थे, जाहिरी नूर नहीं है मगर दिल रोशन है। दिल रोशन है ना, अहले बैत का जिक्र दिलों को रोशन करता है। आंख बहुत इंपॉर्टेंट है, जाने मतलब बहरहाल हम जाहिरी तौर पर आंख से देखते हैं, आंख सारी चीजें, इंसान के बदन के आज़ा, एक पूरी हुकूमत है ना, एक पूरी हुकूमत है। ब्रेन अलग ऑर्डर देता है, आंखें जो कि दो हैं मगर देखती हैं, डाटा इनपुट करती हैं, ब्रेन उसको एक्टिवेट करता है, फिर हुक्म जारी होता है। पाँव चलाना है नहीं चलाना, हाथ उठाना है नहीं उठाना, खाना है नहीं खाना। अब आँख बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर ये आँख क्या उस नूर को देख पा रही है कि नहीं पा रही है? दुनिया का काम ही यही है कि हमारे आगे दुनिया की रंगीनियों को इतना कर दे कि हमें असल वो नूर नजर ना आए। तो अब हम क्या करें जाने वो, तो हम इस दुनिया के अंदर इस नूर को कैसे ग्रैब करें, ये नूर कैसे मिले? नूर, ये नूर न सिर्फ जाहिर को बल्कि इंसान के बातिन को रोशन करता है। कैसे रोशन करेगा? कि हम उस आलम की तरफ मुतवज्जे हो। वो जो परवरदिगार ने नूर को उतारा है, वो नूर डिवाइडेड है, दुनिया के अंदर है, दुनिया में अल्लाह ताला ने उस नूर को फैलाया हुआ है। ये रोशनी, ये जो बाज़ औक़ात अक्सर जवान कहते हैं कि कोई बात, कोई वाक़या, कोई हादसा ऐसा हुआ जिससे इंसान कन्वर्ट हो गया, यानी हिदायत हो गई, तवज्जो हो गई, वो बेसिकली एक झलक है उस नूर की जो कि इंसान के कल्ब पे पड़ती है किसी भी हादसे की वजह से। वो नूर को हासिल करने के लिए जाने मोहतरम इंसान को बहरहाल अपने आप को अपने इमाम की अतात में देना पड़ता है। ये नूर उसी तरफ से आता है। जब इंसान उस नूर को छोड़ दे तो फिर इंसान इस दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन जिंदगी गुजारने मगर अंधेरों में रहता है, और ये अंधेरा कयामत में हसरत में बदल जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान इस नूर को समझे। 61 हिजरी की करबला ने
ایسی روشنی

रोशनी ऐसी शम्मा जलाई, इन्नल हुसैना मिसबाउल हुदा, यानी हिदायत का चराग ऐसी रोशनी हुई कि कयामत तक की इंसानियत उससे रास्ता देख रही है। ये नूर है, ये नूर इलाही है, खुदा ने इसे रोशन किया है। और ये जाहिर को रोशन नहीं करती सिर्फ, ये दिलों को रोशन कर रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम, इमाम हुसैन की गुफ्तगू, इमाम हुसैन का नाम, इमाम हुसैन पर गिरिया कौमों को रोशन किए हुए है और उस मकाम तक रोशनी को लेके आए कि आलम की तारीकियों को दबाते जा रहे। आज आपके सामने दुनिया में जो तशय्यों को इज्जत मिली है, एहतराम मिली है, जो हुसैनी मकतब के शागिर्दों ने दुनिया के अंदर आपके सामने जो नाम पहचान दिया, ये ही असल हदफ है कि ये नूर इतना फैले कि लोग मुतवज्जे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद हमारे दोस्त हैं उलमा इकराम बांग्लादेश में, तो जब से ये जंग हुई तो उन्होंने शियों की मस्जिद में आना शुरू कर दिया। क्यों? वो कहा कि हम देखना चाहते हैं ये लोग कौन है, ये इनका अकीदा क्या है, ये करते क्या है। यानी लोगों के दिल रोशन हो रहे हैं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, कमाल इमाम हुसैन का है। चराग वही है, असल बात यह है कि चराग से फायदा किसने उठाया। तशय्यो दो तरह के तशय्यो, मैंने आपको कहा ना डॉक्टर शरीयती कहते हैं दो तशय्यो है, एक तशय्यो सुर्ख है यानी शहादत, और एक तशय्यो स्याह यानी सिर्फ गम मनाना, और कोई काम नहीं। गम जरूरी है लेकिन गम के साथ जज्बा भी जरूरी है। तो ये नूर प्रैक्टिकल स्टेप, मुश्किलात सिर्फ बयान करना मकसद नहीं है। इस नूर को हम अपनी आम जिंदगी में कैसे आ सकते हैं? पहली चीज तो ये है कि इंसान अपने आप को एक्यूब करे कि ये नूर लगे। मिसाल के तौर पर आप 1000 वोल्ट का बल्ब छोटी वाली जगह पे प्लग करेंगे या बल्ब खराब हो जाएगा या प्लग शॉर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि अपने प्लग को बेहतर करें। अब हमारा प्लग इतना डिस्टर्ब है, इतना छोटा है, ज़रा ज़रा सी बात पे फटना शुरू कर देता है। नाराज़गी, गुस्सा, वालदैन ने कुछ कह दिया, बच्चों ने नहीं मैं तो जाऊँगा, मैं तो रात को जाऊँगा, मैं तो ये करूँगा, मैं थोड़ा आराम, मतलब अच्छे काम कर रहे हैं तो आराम। अब यहाँ हमारे वो स्काउट वाले बेचारे लड़के बच्चे 4 बजे आते हैं आपके, आपको नहीं पता, आप यकीनन आपके कदम की खाक हमारे सरों की जीनत है, जो ज़ाहिर जो इमाम हुसैन का आज़ादार है उसकी बड़ी कीमत है, उसी के लिए सब कुछ है, ये उसी से ही सब कुछ है, ये मजलिस भी उसी से है, जिक्र भी उसी से है। लेकिन ये जवान स्काउट के 4 बजे आते हैं शाम को और रात को 1 बजे जाते हैं, और आपको पता है ये स्काउट सैलरी नहीं होती। ये स्काउट शुरू से ही हमारे स्काउट जो हैं वो ऐसे ही, उत्तराब स्काउट हो गया, पाक हैदरी स्काउट हो गया, ये सारे स्काउट ऐसे हैं, वॉलंटियर हैं सारे। ये जवान आता है अपने कामों को छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के जो भी खड़ा, अब आपसे रिक्वेस्ट करता है कि गाड़ी सीधी कर ले, थोड़ा इधर आ जाए। अब आप उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? मौला अली का कॉल है, मैं मजबूर हूँ बयान कर रहे हुए जाने मोहतरम। इमाम अली क्या फरमाते हैं? इंसान अपनी जबान के पीछे पोशीदा है, छुपा हुआ है। अब आपको जरा सा किसी ने रोक दिया, पढ़ो हट जाओ, नहीं जानते आप, यकीन करें मेरे साथ लड़के चलते हैं, आप पूछ लें किसी से, मेरी सिक्योरिटी अव्वल तो ये भी सब जाहिरी चीज़ें हैं, वरना हमें भी इनका कोई शौक नहीं है जाने मोहतरम, कोई शौक नहीं है। कोई आदमी बड़ा नहीं बनता इन चीज़ों से। मुझे शर्मिंदगी होती है कि हम इस लायक हैं ही नहीं, ये तो बस जाहिर है। वरना आप दूसरे मुल्कों में देखें, आप यकीन करें मैं अकेला बैग पकड़ता हूँ, ट्रेन में बैठता हूँ, उतरता हूँ, सीधा जाके मजलिस पढ़ के दोबारा ट्रेन में बैठता हूँ, दोबारा निकल जाता हूँ। कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। ये हमारे मुल्क के मसाइल हैं ये सारे। कभी कोई लड़का मेरा नज़र आ जाए ना, उसने किसी गाड़ी को इशारा किया है, मैं वहीं उसको बराबर कर देता हूँ। असल तकाजा नहीं है, कौन है हम लोग, अदब नहीं है, तरीका नहीं है। इंसान जबान के पीछे पोशीदा है। जब इंसान अपनी जबान ही

कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो वो नूर कैसे आएगा? वो नूर नहीं आएगा। आप जब नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, आप मजलिस में आए हैं, आपने नूर को रिसीव किया है। आप मजलिस में बैठे हैं ना, आप उस नूर को रिसीव कर रहे हैं। नूर आपका कमाल नहीं है ना मेरा कमाल है, ये सईद शोहदा के जिक्र का कमाल है। मजलिस में आए हैं, गिरिया किया, मसाइब सुने, फजाइल सुने, जिक्र सुना, नूर आ गया। अब इस नूर की हिफाजत आपका काम है। बाहर निकले, कुछ हुआ, गुस्सा कर दिया, कुछ मुंह से निकल गया, कुछ हो गया, नूर गया। नूर जर्फ देखता है, ये जर्फ कितनी देर इस नूर को रख सकता है। अल्लाह के वली जो इस मकाम पे पहुंचे, वो नूर को अपने वजूद में रिजर्व रखते थे। रिजर्व इबादत, सजदे, निगाहें, कान, हर चीज, ख्वाह मुख्वा आप यकीन करें, चाय भी नहीं पी लेते। अभी तो हम लोग को है ना, जगह ये भी पी लिया, वो भी पी लिया, जरूरत क्यों? क्योंकि ये नूर बहुत कीमती है। आपने नमाज पढ़ी, इबादत की, नूर आ गया। आपने किसी के चेहरे की तरफ मुस्कुरा के देखा, मोमिन के चेहरे की तरफ, नूर आ गया। किसी का भला किया, नूर आ गया। किसी की बात सुन ली, मशवरा सुन लिया, नूर आ गया। हत्ता किसी के हक में दुआ की, दुआ की। आयतुल्लाह जवाद मलिकी तबरेजी रिजवानुल्लाह ताला अलैह कुमुल मुकद्दसा में शेखैन कब्रिस्तान में दफन है। बहुत बहुत बड़े और बहुत बड़े आलम दीन थे। इमाम खुमैनी बयान फरमाते हैं, आयतुल्ला शेख खामनाई कहते हैं कि मुझे इमाम खुमैनी ने कहा कि मुझे, इमाम खुमैनी जैसी शख्सियत कहती है कि मुझे अभी तक वो कमी महसूस होती है। इमाम कैसी शख्सियत थे, फिर भी कहते हैं कि मैं आयतुल्ला जवाद मलिक तबरेजी के पूरे दरसों में जा नहीं सका, दर्स में जा नहीं सका, ऐसी शख्सियत थी। वो रात को गिरिया करते थे, तहज्जुद, जो तहज्जुद में उनके लिए दुआ करता था, उन्हें पता चल जाता था किस हुजरे से नूर आ रहा है। नूर ये वह जाने वाला खूब ये कि नूर है। नूर मुश्किल नहीं है हासिल करना। अल्लाह को नूर समावात है, अल्लाह ही जमीन और आसमान, मगर उसको वहीं उतारता है जहां पर रिसीविंग हो। ये जो अस्मा इलाही हैं, ये जो अहले बैत के नाम हैं, ये खुद नूर है। क्यों कहते हैं अपने औलाद के नामों में अहले बैत के नाम शामिल करो, ताकि तुम्हारे साथ ये नूरानियत रहे। असर होता है ना नाम का, मोहम्मद, अली, रजा, इन्हीं नामों के सदके में तो दुबई से बाहर निकाल दिया लोगों को। क्यों? क्योंकि वहां जहालत के अंधेरे हैं। भाई नाम से क्या मसला था? हमारे अहले सुन्नत बरादरान को भी निकाल दिया, नाम क्यों रखा? जो नाम से जलते हो और वो जब आएगा तो हम जलाएंगे। सलाम अलैकुम मोहम्मद। समझने की बात है, नाम से क्या मसला है? नहीं, नाम में नूर है और जुलूमात यानी तारीखी उसे बर्दाश्त नहीं करती। तभी तो 100 साल तक 70,000 मेंबर से अली का नाम लेना मुश्किल था, मुश्किल था। मगर इन्हें क्या पता, नूर छुपाने से, दबाने से नहीं लड़ता, नूर अपना रास्ता खुद निकालता है। जितना तुमने अली को रोका उतना

ही है। जाने को तो नाम देंगे ना, नाम नाम बहुत मुहिम है। अली अल्लामा अमीनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं एक अहले सुन्नत प्रोफेसर था, मौलाए कायनात के फजाइल पे किताब लिख रहा था बगदाद। मैं चला गया, मैंने कहा पता नहीं क्या लिख रहा है, गलत किताब ना लिख दे कल को। तो कह रहे मैं गया तो उसके घर में, जैसे ही मैं दाखिल हुआ तो लोगों अहले खाना यानी कवातीन घर से एक खुशी की आवाज़ आई, जैसे खुश हुए। मैं बैठा, मैंने सवाल पूछा, भाई आप क्या लिख रहे हैं? तो कहने लगे आप बताइए कोई फजीलत की हदीस। तो मैंने कहा अली माल हक, तो हक माल अली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। तो वो कहने लगा कि भाई ये कोई फजीलत तो नहीं इमाम अली की। कहा क्यों? कहा ये हदीस तो जनाब अम्मार के लिए भी है, अम्मार माल हक हकुल माल अम्मार, ये अम्मार यासिर के लिए भी है। तो अल्लामा अमीन ने कहा कि बिल्कुल हदीस उनके लिए भी है, लेकिन अगले हिस्से में दोनों के फ़र्क है। जो हज़रत अम्मार के लिए है कि अम्मार हक के साथ है और हक अम्मार के साथ है, जहाँ जहाँ हक जाएगा अम्मार वहाँ जाएगा। लेकिन कहता है मौलाए कायनात के लिए ये नहीं है। कहा क्या है? कहा अली हक के साथ है और हक अली के साथ है, जहाँ जहाँ अली जाएगा हक वहाँ जाएगा। हम जब ये सुना मोहतरम पर जानते, वो खड़ा हो गया, खड़े हो अब आपने बात ही ऐसी कह दी, यानी हक खुद मौलाए कायनात की जात है, हक यही है, हक कुछ और नहीं है, ईमान यही है, ईमान कुछ और नहीं है, मीज़ान यही है कुछ और नहीं है, सिराज यही है कुछ और नहीं है। अब यही समझना था, यही समझाता रहे मेरे रसूल सारी ज़िंदगी, जो कि लोगों को समझ में ना आया, मगर अभी समझ में आ गया कि उस वक्त भी अली था, आज भी अली के नौकर है। जाने मोहतरम अल्लामा अमीनी ने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन जब मैं आपके घर आया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नाम में नूरानियत कितनी है। तो कहा कि आपके घर वाले खुश हुए थे, तो कहा आपके घर वाले खुश हुए थे, तो कहा मेरी बेटी बीमार है, मरीज है, और जब आप आए तो लिबास में थे। तो हमारे एक मौलाना भी आते हैं, वो भी जाहिर लिबास में होते हैं, यानी मौलाना के तो समझे वो आए हैं, तो वो एक दुआ लेते हैं, तो कुछ अरसे के लिए हमारी बेटी ठीक हो जाती है। तो इन्होंने कहा अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी कुछ लिख के दे दूं। कहा दे दे। इन्होंने कुछ लिखा और कागज़ को लपेटा और दे दिया। कुछ अरसे के बाद खबर मिली कि बच्ची की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। तो किसी ने अल्लामा अमीनी से पूछा कि अल्लामा आपने क्या लिखा था कागज़ पर? कहा मैंने तो कुछ नहीं लिखा सिवाय अली, यानी नाम, सिर्फ नाम। अली मौला, अली मौला। इसी से मुश्किल है जाना वो तमाम दुश्मन को हैदर कर्रार से मुश्किल है। नूर, नूर अंधेरे को, क्यों? क्योंकि नूर तारीकी का कातिल है, कातिल। याद रखिए, तारीकी कभी नहीं चाहती कि आपका वजूद नूरानी हो जाए, हमेशा किसी न किसी तरीके से आलूदा किया हुआ है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी जवान है, माशाल्लाह आप सब लोग मेजॉरिटी जवानों की है, अपनी कीमत को पहचाने। आपका वजूद पाक है और इसको नूर को हासिल कर। मैं बड़ी सादी सी मिसाल आपको देता हूँ और प्रैक्टिकल जो हम यूज़ करते हैं, जितना हम अपने आप को दुनिया में डुबोते रहेंगे
उतना अंधेरों में होते रहे। मिसाल के तौर पर रात को आप बैठे हुए, मोबाइल आपके हाथ में, इंस्टाग्राम आपके हाथ में, टिकटॉक आपके हाथ में, सब आपके आप देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। एल्गोरिथम उसका जो है वो आपके स्टॉप पर अगली रील को डिजाइन करता है। कितने सेकंड यहाँ रुका, अगली वैसी देगा, किसको उसने देखा। और अगर आपने कहीं सर्च कर लिया तो बस फिर उसने आपके लिए सब कुछ डिजाइन कर लिया, कुछ लाइक कर लिया, उसका एल्गोरिथम बनता जाए। आप बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, अंदर जंग लगता गया, लगता गया, यहाँ तक कि इंसान खाली हो जाता है। फिर इंसान फिर वो करता है, वो चीज़ें करता है कि जो उसे करनी नहीं है। बहुत माजरत के साथ, बहरहाल मजबूरी है ये बातें अपने आप को आपको पहुँचाना। इज़्ज़ाने मोहतरम, जिस तरह नशा कोई भी ड्रग एडिक्शन क्रिएट करती है और नशे करने वाले से वो चीज़ छीन ली जाए तो कैसे तड़पता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, कैफियत उसकी कैसी हो जाती है। ये सोशल मीडिया भी ऐसे ही, ये आप छीन लें किसी बच्चे से, आप बात करना छोड़ देता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और खुद उसके बाद उसको एहसास होता है कि उसने कुछ खराब किया है, लेकिन क्योंकि नशा ऐसा है फिर करता है। क्योंकि आपको पता है कि एल्गोरिथम जो इंस्टाग्राम का है उसका डोपामाइन वही रिलीज करता है जो ड्रग्स का रिलीज करता है। इतना डिजाइंड है, अच्छी चीजें भी हैं, आप मजलिस सुने, नुआ सुने, कुरान पढ़े, ये, लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं कि जो कुरान की कोई रील आ जाए तो उसको रुक जाते हो, और बेअदबी ना हो जाए, हटा लो हटा लो। अजान जैसे टीवी पे नहीं आती थी, लोग चैनल चेंज कर देते थे, बेअदबी ना हो जाए। इसकी मजा क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जुलुमात है, अंधेरा है अंधेरा, और जब यहाँ पर नूर हो तो फिर इंसान रात की तारीकी में उठता है। खुतबह मुत्तकीन, नहजुल बलागा, मुत्तकीन की सिफात, मुत्तकी वो है जो रात की तारीकी में खड़ा होकर कुरान की आयात की तिलावत करता है, और जब यार और जब वो और जब वो बहिश्त की आयात पे पहुंचता है, यानी जन्नत की आयतों पे, उसमें डूबने लगता है, और जब जहन्नुम की आयात को पढ़ता है तो उससे खौफ खाने लगता है। हदीस है कि जिस घर में कुरान की तिलावत हो, अर्श वालों को वो घर सितारों की तरह चमकते हुए नजर आते हैं। नूर, नूर है। इतना आसान, मुश्किल थोड़ी है, जाने मोहतरम, कोई चीज मुश्किल नहीं है, मुश्किल बना दी है। और जब तक ये नूर वजूद में नहीं आएगा, आप खुद सोचेंगे हम कैसे अपने आप को रोशन करें और कैसे हम दुनिया को रोशन करेंगे, बड़ी जिम्मेदारी है। सैयदुश्शहदा ने न सिर्फ करबला को रोशन किया बल्कि अपने असहाब को भी वो नूर अता किया कि कयामत तक इंसानियत उन्हीं से रास्ता ले रही है। आज हर शहीद होने वाला, चाहे वो दुनिया का बच्चा हो, चाहे वो आपके सामने लबनान के अंदर जो वाकयात हैं, लबनान के अंदर आपके सामने जारियत अभी भी है, अभी सुबह साइन होता है, शाम को फिर वो कहानी हो जाती है, अभी सब दुनिया खुश हो रही है। भारत पाकिस्तान की हुकूमत जहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है, अपनी तरफ से तो बड़ी पूरी कोशिश कर रही है कि जंग ना हो, सुलह ना हो, और हमें बहरहाल सपोर्ट भी करनी चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत को, आर्मी को, जनरल को, ख़ासतौर पर मोहसिन नकवी साहब जो कंटिन्यू पिछले कई हफ्तों से मुसलसल सफ़र कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल दुश्मन नहीं चाहता, क्यों, दुश्मन इस नूर से घबराता है कि अगर ये हक वालों की आवाज़ दुनिया तक इसी तरह चली गई तो फिर हमारा क्या होगा, घबराहट उसको उसी से। और भारत में यहाँ जिक्र करूँ, मैं अभी आ रहा था तो मैंने भारत निसार भाई से पूछा भी सही, जो वाकया अभी डिफेंस में आपको बताया कि बकीयतुल्लाह फेज 6
सभा एवेन्यू पे मौलाना शहनशाह नकवी साहब मजलिस पढ़ते हैं रात को, तो वहाँ पर

सिक्योरिटी वालों ने कहा भी था पुलिस से कि आप हमें कुछ बैरियर दें सीमेंट्स के, और उन्होंने नहीं दिया सिक्योरिटी ने पुलिस ने, तो एक सुजुकी वैन आई और ज़ायरीन ख़ासतौर पर ख़वातीन वाली साइड को रोनती हुई निकल गई, जिसमें से एक बच्ची शहीद हो गई, दूसरी क्रिटिकल कंडीशन में और कई ख़वातीन जख्मी हो गई। कसूर किसका? पुलिस। बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा जाने मोहतरम बोलना नहीं चाहता कि फिर मसाइल हो जाते हैं सबके लिए, हमारे लिए तो खैर हो, जो होना है होना ही है ज़िंदगी में, हमने क्या करना। लेकिन देखिए, हाथ से दुश्मन चाहता है फसाद हो, इख्तलाफ हो, दुश्मन का काम ही है। दुश्मन कभी हम नहीं चाहते। शिया सुन्नी इत्तेहाद पैदा हो गया, पूरी दुनिया एक उम्मत बनती जा रही है। हमें बहुत अपने आप को यानी ओपन आइज के साथ चलना पड़ेगा, इन फसाद का ईंधन ना बने। ये गलती बहरहाल मैनेजेरियल गलती है, सिक्योरिटी सही नहीं दी उन्होंने। और जहां हम सब हैं, हम सब की भी जिम्मेदारी है हम सिक्योरिटी के साथ कोऑपरेट किया करें, ये हमारी जिम्मेदारी, और ख़ुद भी विजिलेंस रहा करें। कोई भी हादसा है, बहरहाल हादसे के बाद फिर अफसोस साथ में रह जाता है और कुछ भी नहीं होता। तो बहरहाल परवरदिगार जो लोग ज़ख्मी हैं खुदा उनको शिफा अदा फरमाए, और हमारे इदारों को खुदा तौफीक दे के वो हालात को बेहतर से बेहतर करें। जाने मोहतरम, दुश्मन घबराता है कि जो भी था, जो भी मकसद था, जो भी जता हदफ क्या है, मजलिस डिस्टर्ब हो, अज़ादारी ना हो, जिक्र ना हो, मुश्किल यही है। मगर ये जिक्र कभी रुका नहीं है। ये जिक्र खुद उनका है जिन्होंने अपने बदन कटवा दिए, तो जिनके अपने बदन कट गए तो उनके लिए लोगों के बदनों की कोई कीमत नहीं है। यकीनन वो बच्ची खुदा की बारगाह में असरदार मौला है, इमाम हुसैन के लिए आई थी, खुदा उसके लवाहिकीन को सब्र दे। लेकिन खुद उसका मकाम तो उस आलम में से जो शोहदा के पास होगा ना, यकीनन। दोबारा हम इन सारी बातों को मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, जाने मोहतरम वापस आए। नूर बहुत ज़रूरी है, अपने वजूद को इस नूर से आशना करें। अल्लाहुम्मा रब्बन नूरुल अजीम, खुदा सबसे अजीम नूर है, नूर है, रोशनी है। यही रोशनी है जो इलाही रोशनी है, बहिश्त की जो आप जानते हैं, जन्नत में सूरज नहीं है, नूर है। किसका नूर है? रिवायत है कि मलाइका ने अचानक से देखा कि परवरदिगार ने बहिश्त को नूरानी कर दिया, इतने मबहूत हुए मलाइका के बेहोश हो गए। पूछा, परवरदिगार ये कैसी रोशनी थी? कहा, ये फातिमा का नूर है। जनाबे सैयदा का नूर है जो जन्नत को रोशन करेगा। अब जो बोझ रखता होगा, पहली बात तो जाएगा ही नहीं, जब जाएगा ही नहीं तो रोशनी कहां से मिलेगी उससे। जाने मोहतरम, ये शहजादी कौनैन की मोहब्बत, शुक्र करें इसका, ये वो नूर है जो कयामत में बिखरे हुओं का इंतखाब करे। हदीस सुनिए ना, हदीस के कयामत में जैसे एक परिंदा दानों को चुनता है ना, उस तरह ऐना फातिमियून, कयामत में सदा बुलंद होगी, कहाँ हैं फातिमिया वाले, वो जो जनाब सैयदा का जिक्र करते थे, जो उनकी मजलिस का एहतमाम करते थे, वो जो किसी तरीके से भी मदद करते थे, कयामत में उनको चुना जाएगा। नूर है, इसको संभाल कर रखे जाने को, और प्रैक्टिकल अपनी ज़िंदगी में इसको पेश करें, अपने किरदार को, अपने अखलाक को खुदा की बारगाह में शुक्रगुजार हो। आज जो नस्बत है शब की, जवान की नस्बत है।